जा जा कुमती ता भागी खा जा मेरा अगाड़ी न बस कि जोगी भई जा म मर्दिन तलाई जु म खरानी त कि गई माफिका मागीले जुजुटेर कहाँ मैले बिराए भनी कि मेरा दुई पाउमा त ठोकी दे जन्म फ्लाटेर अनि तँ करिन दुई त धनको भतुवा।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।